आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर एक्सेप्शनल एज यू मस्ट हैव गेस्ड, लेकिन एक रिलेशनशिप में मेरी प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्किल्स आर इवन बेटर, और मेरा हर एक्स बॉयफ्रेंड इस बात का गवाह है कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है. यू नो आई टेल यू समथिंग, इट्स वेरी इजी यार, प्रॉब्लम्स तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, एक थेरेपिस्ट, एक समझदार इंसान, लेकिन उम्दा हाई लेवल की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल चीज है यार, कि जिसमें सामने वाला इंसान, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कम से कम 3 महीने माइग्रेन का शिकार हो, कम से कम ऐसे 4 हफ्ते ऐसे हो जहां उसे कब्ज की बीमारी हो. अगर आप उस लेवल ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्किल्स पर नहीं पहुंचे हैं एंड यू वांट हेल्प डूइंग दैट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर मोस्ट रिलेशनशिप्स, प्रॉब्लम क्रिएटर फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स. और अगर आपको मुझ में ये सब सुनकर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: झुमका?
1: बॉयफ्रेंड को बोला कि मम्मी पापा के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। अपने मम्मी पापा को बोला कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। बट जा आप एक कम्प्लीटली न्यू स्ट्रेंजर के साथ रहे थे, जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट नॉटी। अगर पकड़े गए बाय एनी ऑफ द पार्टीज तो क्या होगा, कभी सोचा है?
0: द सीक्रेट बॉक्स।
1: आई जस्ट सेड अभी सोचा है। अगर सोच लिया है और कन्फेशन करना चाहते हो, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक। एंड व्हाइल यू डू दैट, आज मेरे साथ लाइन पर मिस्ट्री कॉलर नहीं है, ही वॉन्ट्स टू गो विद हिज नेम इंटायरली। मेरे साथ लाइन पर है ओम। हेलो ओम जी।
2: I'm fine, मैम, आप कैसे?
1: अरे यार मैम मत बोलो, सारा वाइब किल हो जाता है।
2: आप कैसे हो रोशी?
1: मैं अच्छी हूँ ओम जी, हाउ आर यू? आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एक बहुत ही अमेजिंग फनी स्टोरी सुनाने वाले हो।
2: लास्ट ईयर की बात है, मेरा एक फैंटेसी था, ऑकवर्ड फील हो रहा है। सो मैंने मेरे पार्टनर को बोला, पहले तो उन्होंने मना किया, बिकॉज क्या है वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत लाइक कि उन्हें मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो मैंने बोला कि यार इट्स ओके।
1: वो मान गई?
2: मान गई मेरे लिए।
1: हाँ।
2: फ्रेंड है, उसका मुझे सीक्रेट क्रश
1: था। उसका आप पे क्रश था या आपका उस पे क्रश था?
2: उसका, उसका।
1: अच्छा ठीक है।
2: तो मैंने उससे पूछा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप आ सकते हो?
1: हाँ।
2: तो वो बोल रहे कि कौन कौन है। मैंने बोला कि मैं हूँ, ये है और आप। चलो हुआ, सब हुआ। फिर हम गए महाबलेश्वर, गए थे वहाँ पे, हमने मैंने रूम बुक किया। हम पहले घूमे, पूरा घूमे, टाइम स्पेंड किया इन्होंने एक साथ। इनको एक चाहिए था, इनको एक चाहिए था। पहले वाइब मैच नहीं हुआ, थोड़े टाइम बाद वाइब भी मैच हो गया। अब बात आई रात की, क्लाइमेक्स टाइम। सो मैंने उनको पूछा कि आप दोनों ऊपर ये करोगे, सोओगे या कहीं एक और रूम ले लो? सो शी वाज लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, मैं हम तीनों एक ही में एडजस्ट हो। मैंने बोला नहीं यार इधर सही नहीं लगता, मैं भी थोड़ा खुरापाती था। हम तीनों सोए थे, वो दोनों एक साइड में, कॉर्नर पे था राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में मेरी गर्लफ्रेंड और उसके साइड में मेरी फ्रेंड। पूरी सा एटमोसफियर बन गया, थोड़ा माहौल भी बन गया। सब स्टार्ट हुआ, एक टाइम ऐसे आया कि सीन चालू है बट अब दोनों में झगड़ा चालू।
1: आपकी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में? ओह माय गॉड, दैट इज क्रेजी।
2: गाड़ी जो है फुल टॉप गियर में स्ट्रेट हाईवे पे सीधा जा रही है। ऐसा होता है एक्सप्रेस वे में पता नहीं कहाँ से कोई तो स्पीड ब्रेकर लगा देता है। पूरा पूरा जो प्लान था पूरा एंड कुछ नहीं हुआ उसमें, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं।
1: दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट सिचुएशन। आपको रोशिफाई कर दूं मैं?
2: कर दो रोशिफाई।
1: हाँ, कर दूं ना, ले लो यार आप।
3: You've been roshified.
1: बेचारा यार, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए आपके तो।
2: अरे अरमान बह गए, पता नहीं क्या बह गया।
1: अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही ओम की तरह आपका भी पर्पट हैज बीन खात, व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी। और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैं अपने पापा की बेटी नहीं, अपने पापा की बेटी हूँ. नहीं, मेरे पापा को भी यही लगता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पापा राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट माई बेस्टी, जिसके पिताजी ने ये डिसाइड किया है कि बेटी तुमसे कुछ हो पा रहा नहीं है और 2026 में इस हाई टाइम दैट तुम्हारा हम ब्याह कर दे. तो ब्याह के लिए पापा पकड़ के लाए हैं एक ऐसा कैंडिडेट जो मेरी बेस्टी के हिसाब से शी इज़ नॉट इवन श्योर इफ ही इज़ फुली अलाइव, बिकॉज शी इज़ लाइक यार वो इतना मरियल बोरिंग इंसान है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुझ पर ये अत्याचार करके अपने सालों का बदला लेना चाहते हैं जब मैं रिबेलियस बच्ची थी और मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी. बट कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पापा जी ने ये कहा है कि जून के सारे महीने में बेटी तुम इसे ट्राई आउट तो ज़रूर करो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया आफ्टर वन मंथ ऑफ ट्रायल पीरियड तब हम सोचेंगे, लेकिन एक मंथ मेरी ये बेस्टी इस बोरिंग ऑलमोस्ट डेड इंसान के साथ फंसी हुई है और अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी बीटी को जीटी कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं इस बंदे को मिल चुकी हूं एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. इस बंदे को एक लाइफ रिससिटेशन मशीन की ज़रूरत है या फिर एक कॉफिन की, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ फुली अलाइव माई सेल्फ. ऑन दैट नोट, अगर मेरी बेस्टी की तरह आपके भी जीवन में आपके पापा ही स्वयं आपको बीटी दे रहे हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप? इट कुड बी योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑल्सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आपकी बीटी स्टोरी है तो मुझे उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान. मेरी हिंदी थोड़ी खराब है लेकिन मेरा दिल बिल्कुल ही परफेक्ट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot. Oh, wow.

0: Mirchi, it's hot.
1: Main nikla, okay.

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है, कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना। लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान। और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है, क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन। एक गाने का, एक कहानी का या फिर एक इमोशन का। और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में। हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं। The Deol Brothers, they're suddenly everywhere. And मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, and that is talent. लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, and that is resilience. शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से। ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है, सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा। बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन, कहीं जाना मत। आई विल बी बैक।
0: Number 20.

0: मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है। और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं। एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कम्प्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे, पर पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस और श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी।
2: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11
1: अच्छा

0: चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है, जैसे शाम की ठंडी हवा, जैसे वो लंबी ड्राइव, जैसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना, और हाँ शायद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है। दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। And how Shahid can still look so convincing as a college boy, it totally baffles me. But he nails it. मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बस इतना पता है, मैं इसे स्किप नहीं कर पा रहा। And maybe that's the biggest compliment a song can get. Maybe this song will go to number one. लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds. और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का दो अलग दुनिया एक साथ. This is तुझको from Cocktail 2.
1: Number 10.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्ज देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड कि बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जाने क्या होगा रामा।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर थ्री

वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ, करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक पीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, वी गॉट रोमांस, वी गॉट एक्शन, वी गॉट पेट्रियोटिज्म, लेकिन स्टाइलिश इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ऐसा एंटी हीरो जिसके लिए आप सीक्रेटली रूट करने लगते हो, देयर इज नन, जीरो, कोई भी नहीं है। शायद इसलिए डॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉलीवुड हर दूसरे हफ्ते एक सीक्वल अनाउंस करता है, तब उसकी सबसे यूनिक फ्रेंचाइज अनसर्टेनिटी में खड़ी है, एंड दैट फील स्ट्रेंज। हो सकता है डॉन 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, विच इज वाई आई सेड इट्स द डेथ ऑफ कूल। सो नाउ इट इज अप टू फरहान अख्तर, वही डिसाइड कर सकते हैं इफ इंडिया गेट्स अनदर डॉन, इफ द वर्ल्ड गेट्स अनदर डॉन, या फिर मे बी वी हैव सीन द लास्ट ऑफ हिम। फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर 1 एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव, ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर 1, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर। नंबर 1।

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Michi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक फॉर द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: दिस सॉन्ग स्क्रीम्स दैट पंजाबी आ गए हैं। वे दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन। गाने का नाम है डीलर। 11 हफ्तों से पंजाबी इस काउंटडाउन पे रेजिडेंट बन चुके हैं। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था। डोंट वरी, शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे। अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स बाय मीका सिंह। नाम ऐसा है, सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है। आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है। ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे। चाहे उनके फिल्मों के गाने हो, नॉन फिल्म गाने हो, मीका सिंह इज अ कैरेक्टर in his own right. सोचने वाली बात है, all artists want that identification, right? कितनी बार होता है that हम कोई गाना चलाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है, उसने गाया है, किसका गाना है? But with Mika Singh, there's never a scope of any confusion. उनकी आवाज ही उनके गानों की takeaway factor है। पिछले हफ्ते मैंने आपको इस countdown पे एक ऐसा गाना सुनाया था, आपको intro music सुन के बताना था ये कौन सा गाना है। कभी कभार वो intro music भी गाने का takeaway factor होता है। रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार फिर से सुनाती हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है।

0: @RJ करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, नीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना इज द अदर रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanika. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se, wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाय और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं फॉर आवर सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में दो बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

मीका का गाना कॉल समथिंग समथिंग. इफ यू आर फ्रॉम द 2000s का जेनरेशन, यू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉन्ग. बिफोर मीका सिंह बिकेम वॉइस ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एंथम, जैसे कि मौजा ही मौजा, सुबह होने ना दे फ्रॉम देसी बॉयज, आंख मारे फ्रॉम सिम्बा, मतलब उनकी आवाज हम सुनते हैं और वो पार्टी वाली आवाज याद आती है, 440 वोल्ट फ्रॉम सुल्तान, मीका सिंह ओन्स ऑल दीज सॉन्ग्स. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेज का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनके एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते ही आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन इट, आई चैलेंज यू, ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. द बिगेस्ट पार्टी वॉइस ऑफ आर जेनरेशन मीका की आवाज में, दिस इज समथिंग समथिंग, अ 2006 इंडी पॉप सॉन्ग प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.

0: गॉड मीका सिंह, योर वॉइस इज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म, मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब नहीं नहीं मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे, दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रेकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना व्हिच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर, हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अक्सर जब हम बैठते हैं, म्यूजिक मूवीज के बारे में बात करते हैं, हर जनरेशन के कुछ ऐसे गार्ड्स होते हैं, मॉरल गार्ड बोलते हैं उनको, जो ये बातें शुरू कर देते हैं कि यार आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है, आज की फिल्मों में वो बात नहीं है। 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी। अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना, वो कंप्लेन करते रहेंगे। व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना। मे बी रोमांस, सैपी, हार्टब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक। मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना, तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग। आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है। इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाई निशान सरकार। We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फेमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है। एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू। What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने folk music को कि यार ये तो उस जमाने का music है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है। उन्होंने उससे ही आज की लैंग्वेज में बात करके दिखाई। गाना बहुत एनर्जेटिक है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली डांसेबल, ग्रूवेबल, लेकिन डांस के लिए नहीं बना है। एंड कोरस में एक ऐसी क्वालिटी है दैट एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है। एंड दैट्स वॉट मेक्स इंडिपेंडेंट इंडियन पॉप म्यूजिक सो एक्साइटिंग। हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड ऊबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

इस गाने को एक बार सुन के काम ही नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJKaringa ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक्ड इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा, हम इनसे आके शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर, पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है। अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिधर तू पीछे यातन की ना चौपर जोगी डब दबी ना।
0: मीका सिंह द अदर रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंपर चोर ने दे दिया बम्पर।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वो मिट्टा रोर का शीशा।
5: तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर।
0: मेष रेशमिया इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड शराब दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का रांझा वॉज ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
6: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
0: एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन बाय बंजारे। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। दिस हरियाणवी सॉन्ग इज चेंजिंग हाउ म्यूजिक वर्क्स, हाउ इज ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन लैंग्वेज एंड जॉनर्स। बैरन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 1।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

Mirchi. It's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

आजकल लोग ना अलार्म क्लॉक से नहीं जागते हैं, आजकल लोग नोटिफिकेशन से जागते हैं। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग। जो नोटिफिकेशन आ चुका है कि ये शो शुरू हो चुका है, जहाँ पर तुमको मिलती है थोड़ी सी लाफ करने की बातें, थोड़ी सी कनेक्ट करने की बातें और थोड़ी सी प्रिटेंड करने की बातें कि हम रात को 8 घंटे की पूरी स्लीप लेकर सुबह फ्रेश उठते हैं। वैसे फिलहाल ऑफिस जा रहे हो, रिमोट वर्क कर रहे हो या फिर कैमरा ऑफ करके ब्रेकफास्ट बना रहे हो, आई सी यू विदाउट एनी जजमेंट, लेकिन अटेंडेंस लगा दो, जल्दी से जाओ, मुझे फॉलो कर लो और एक्सपर्ट। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और आज के शो में तुम्हें मिलने वाला है फन, फिल्मी फील्स, देसी नॉस्टैल्जिया, रैंडम थॉट्स और अराउंड द वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और साथ साथ में कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। बीच बीच में मैं आती जाती रहूंगी तुम्हारे लिए। नाम है प्रिसला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग। फिलहाल बने रहो मेरे साथ। गुड मॉर्निंग to you, stay tuned and stay hot.

दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। अब हम चलने वाले हैं जल्दी से टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर। आज है 9th of June एंड ट्रस्ट मी, हिस्ट्री ने आज के दिन काफी सारे ड्रामे किए थे। सबसे पहले चलते हैं 68 AD में, रोमन एम्परर नीरो ने अपनी लाइफ एंड की थी और उसके साथ एंड हुआ था जूलियो क्लोडिया डायनेस्टी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1870, दुनिया ने लूज किया लेजेंडरी ऑथर चार्ल्स डिकेंस को। अगर तुमने कभी भी ड्रामेटिक फैमिली ग्रुप चैट्स देखी है तो डिकेंस वुड प्रोबेबली हैव रिटन 3 novels अबाउट दोस। फिर आता है मेरा पर्सनल फेवरेट हिस्ट्री नगेट, 1934 में डोनाल्ड डक मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द वाइज लिटिल हेन। इमेजिन बीइंग फेमस फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड स्टिल साउंडिंग परमानेंटली अनॉयड। #respect। अब थोड़ा देसी चैप्टर खोले, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी बिकेम इंडियाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जी। काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस जमाने में क्योंकि देश को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। फिर 1983 में मार्गरेट थैचर गॉट इलेक्टेड इन द UK। एंड दैट्स इट फॉर हिस्ट्री फॉर टुडे। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, इंस्टा और एक्स पर मेरे हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करने के लिए नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चुपक के बैठने का यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, मजा

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये सुनो, पेटी के डायरेक्टर बूची बाबू साना ने ओपनली कहा है कि फिल्म में जानवी कपूर के कुछ सीन्स लोगों को थोड़े से मिसलीडिंग लग रहे हैं और उन्होंने वो सीन्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं। अब मुझे ये ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग बात लग रही है, बिकॉज यूजुअली मूवीज बोलती है ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पर डायरेक्टर ने कहा है ओके आई रिसीव द फीडबैक एंड आई रेक्टिफाइड इट। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि पेटी कोई टिपिकल कमर्शियल मसाला मूवी नहीं है, उनके हिसाब से इट्स मोर ऑफ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा सा रिलेटेबल भी है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ना हम एक्स्ट्रा सीन्स ऐड कर देते हैं थोड़े से ड्रामेटिक पॉजेस लेने के लिए, ओवरथिंकिंग साउंड ट्रैक्स भी ऐड हो जाते हैं कुछ चीजों पर ज्यादा सोचने के लिए, इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स तो होता ही होता है, फिर बाद में एडिट करना पड़ता है कि नहीं यार लाइफ तो ऐसी चल नहीं रही है। वैसे तुम किस टीम के साथ हो, वो लोग जिनको प्रॉब्लम हुई पेडी के सीन से या फिर डायरेक्टर जिनके हिसाब से पब्लिक रिएक्शन मैटर करता है लेकिन फिल्म में कुछ गड़बड़ नहीं है? लेट मी नो इन माय DMs, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन Instagram एंड X एंड WhatsApp पर तुम मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग मैं मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अभी आउटसाइड का क्या सीन चल रहा है, लेट्स फाइंड आउट। 64 डिग्री फारेनहाइट है फिलहाल, क्लाउडी वाइब्स है, लेकिन हवा जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्रामेटिक है एंड उसकी वजह से फील हो रहा है 61 डिग्री फारेनहाइट। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक पार्टली क्लाउडी वाइब्स बने रहने वाले हैं। सीन थोड़ा सा सनशाइन वाला, थोड़ा सा मिस्ट्री वाला रहेगा कि हम सोचते रहेंगे आज मौसम कैसा होगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। आज 9 बजे के बाद मोस्टली सनी हो जाएगा वातावरण, मतलब स्काई जो है वो फाइनली थोड़े से एफर्ट डालकर थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होकर आएगा। आज का टेम्परेचर रेंज काफी इंटरेस्टिंग है, मॉर्निंग फील्स कूलर अराउंड 58 टू 59 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन आफ्टरनून तक आते आते द टेम्परेचर विल जंप अप टू 76 डिग्री फारेनहाइट। आउटफिट एडवाइस मेरी यही रहेगी कि देसी पेरेंट्स के लॉजिक के हिसाब से चलो, एक लाइट जैकेट जो है उसे अपने साथ ले जाओ बेटा, और हाथ में पकड़कर घूमते रहना तब तक जब तक तुम उससे बोर ना हो जाओ, लेकिन जैसे ही तुम उसे अलग रखोगे तभी तुम्हें ठंड लगने लगेगी। वैसे रेन लवर्स, तुम्हारे लिए एक बैड खबर है कि अम्ब्रेला को आज छुट्टी दी जा सकती है क्योंकि देर इज नो रेन कमिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स जस्ट लाइक द लास्ट 24 आवर्स। तो क्लाउड्स जो है वो सिर्फ अटेंडेंस मार के आज निकल लेंगे। तो अभी फिलहाल बाहर जाने के पहले लेयर के प्लेयर बनकर जाना और SPF 50++++ लगाना और साथ साथ में मिर्चीदार वाइब रखना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, और मुझे तो अपने साथ रखोगे ही। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। Stay tuned and

Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने की. सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जिसने फिलीपींस को हिट किया है और एक 36 स्टोरी बिल्डिंग लिटरली साइड टू साइड स्वे करती हुई दिखाई दी एक वीडियो में. रूफटॉप पूल का पानी भी स्पिल हो गया है. रिपोर्ट्स के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट एंड मेनी पीपल आर इंजर्ड फॉलोड बाय सुनामी इम्पैक्ट टू. It's a pretty tough news to wake up to, sending thoughts and prayers to everyone affected. Number two par, reports today indicate that the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel is pausing on holding fire against Iran for now, while emphasizing that Israel would respond again if Iran resumes attacks. The broader picture is that this appears to be a temporary de-escalation rather than a formal peace agreement or final end to the conflict. Or number three par, cricket say, former Australian captain ग्रेग चैपल ने बोला है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे यंग बैटिंग स्टार्स डोमिनेटिंग बोलिंग ओपन्स अप बिगर क्वेश्चंस अबाउट मॉडर्न क्रिकेट फॉर्मेट्स. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर विद मी प्रिसला. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

actress Jennifer Wingett is reportedly engaged to Singapore-based businessman Ishmael Williams. And shaadi ki bells may ring later this year. Or according to reports, planning mode apparently says Christian wedding vibes hone wali hai. And possibly a September se October ki timeline ho sakti hai. Again, keyword reportedly. Main yahan par invitation print nahi kar rahi hu, but thoda sa excitement ka mood bana rahi hu. Aur sunne mein ye aa raha hai ki industry ke friends ko bhi plans ka idea lag चुका है, मतलब वो स्टेज आ चुका है जहाँ पर कैजुअली लोग बोलेंगे कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वैसे वेडिंग्स का सीजन भी ना फनी होता है, एक मिनट यू आर लाइकिंग पिक्चर्स, नेक्स्ट मिनट रिलेटिव्स आर आस्किंग अरे तुम्हारी बारी कब है भाई। और अगर वेडिंग के लिए ज्वेलरी शॉपिंग का मूड तुम्हारा बनी चुका है तो मैं एक सजेशन देती हूँ, आर के ज्वेल्स पर पहुंचो जहां पर तुम्हें रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस मिल रही है, रियल गोल्ड ज्वेलरी एट रियल प्राइस मिल रही है। जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, यू पे ओनली फॉर द गोल्ड एंड डायमंड वैल्यू। और तुम्हें बेस्ट वैल्यू बेस्ट प्राइस पर कहीं और नहीं मिल रही है, आर के ज्वेल्स पर मिल रही है, फटाफट से वहां पर पहुंचो। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। एंड अभी फिलहाल तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स चलाने वाली हूं मैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसला, मुझे सुनते रहो और मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. गुड मॉर्निंग, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे. आज के दिन बर्थडे बेबीज को मिलना चाहिए एक्स्ट्रा चाय, कॉफी, एक्स्ट्रा केक, जो कुछ वो मांगे सब कुछ. और कैलोरीज का काउंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये है मिर्ची के रूल्स. एंड यू शेयर योर स्पेशल डे विथ जॉनी डेप एंड ऑफकोर्स नैटली पोर्टमैन एंड देन माइकल जे फॉक्स. और बर्थडे ट्विंस में हमारे बॉलीवुड से तुम्हारे साथ साथ में है एक्टर करण वाही, अमीषा पटेल एंड साथ साथ में सोनम कपूर. यानी कि अगर आज के दिन तुम भी बॉर्न हुए हो ना, तो चांसेस आर हाई कि तुम थोड़े से ड्रामेटिक हो, कैमरा अवेयर हो. और मैं तो नॉर्मली ऐसे ही एटीट्यूड में रहता हूँ या रहती हूँ, ये बोलने वाले हो. और बर्थडे प्रोटोकॉल याद रखो, मेक वन अनरीजनेबल विश, ईट वन अननेसेसरी डिजर्ट एंड एक फोटो तो मैंडेटरी बनता है केक के साथ, जिसमें तुम ऑकवर्डली केक कट कर रहे हो. और वो तो मुझे भेज सकते हो या टैग कर सकते हो उस पिक्चर में मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033-647-244. Filhal, Mirchi Dar Banger is coming up for you. Stay tuned and stay hot. Yeah, the meat bros. Just tell me.

0: गोल्ड लवर्स, मैं हूँ प्रसुला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का आज का हाल क्या है।
1: राज जोश विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,540, $4,540 पर अंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइस अमेरिका में इंडिया से अबाउट 15% चीपर है। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान से अमेरिका में गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं। कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से समझें कि किस तरह से 15% गोल्ड का प्राइस अमेरिका में इंडिया से सस्ता है, और गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: एंड देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6 4 7 2 4 4. Stay tuned and stay hot.

right, time to have some around the world ki updates served with your breakfast chai and coffee. Good morning, mera naam hai Priscilla. This is Mirchi Mornings. सबसे पहले US वाइस प्रेसिडेंट JD Vance शेयर्ड इन हिज बुक कम्युनियन दैट आफ्टर अ डिफिकल्ट पर्सनल कॉन्वर्सेशन कनेक्टेड टू लॉस एंड रिफ्लेक्शन हिज वाइफ उषा वैंस बिकेम ओपन टू द आइडिया ऑफ अ फोर्थ चाइल्ड आफ्टर अर्लियर सेइंग नो. नंबर टू पर रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डेप्यूटी जेलर को रिमूव किया गया है amid allegations of VIP treatment linked to accused individuals in the Twisha Sharma case in Bhopal, India. And an internal inquiry is underway. अभी प्रोसेस चल रहा है और अथॉरिटीज findings रिव्यू कर रही हैं. And नंबर थ्री पर क्रिकेट से आफ्टर ऋषभ पंत स्कोर्ड 81, former क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन dropped a line that deserved cinema background music. He compared getting out after reaching 80 to driving 3 kilometers and then jumping off the mountain with 20 left. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Mere yani ki Priscilla ke saath tum Mirchi Mornings sun rahe ho. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay

0: हेलो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम सुनने वाले हैं सितारे क्या कहते हैं।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इरीज यानी मेष राशि, मनी आइडियाज आ रहे हैं अमेजिंग, लेकिन गूगल डॉक में सेव करके मिलियनेयर नहीं बनते। बेबी एक्शन मोड ऑन कर लो। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज तुम क्रिटिसिज्म प्रूफ मोड में हो, लोग डिसएग्री करेंगे, तुम बोलो थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड कंटिन्यू थ्राइविंग। लकी कलर इज हनी गोल्ड, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, स्लो डाउन, नॉट हैपनिंग। तुम्हारी एनर्जी आज एयरपोर्ट ट्रैवलेटर पर चल रही है, बस हाइड्रेशन को भूल मत जाना। लकी कलर इज स्काई मिंट, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, इंपल्स डिसीजन से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, स्पेशली फैमिली और फाइनेंसेस में। आज रिप्लाई लेटर इज इक्वल टू सेल्फ केयर। लकी कलर इज मून सिल्वर, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, समवन अपसेट विद यू, डोंट ओवर एक्सप्लेन। चार्म प्लस ह्यूमर इज इक्वल टू डैमेज कंट्रोल। तुम्हारा टेड टॉक फेस ऑलरेडी रेडी है। लकी कलर इज सनबर्स्ट ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। वर्गो यानी कन्या राशि, आज हेल्प मांगने से प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। टीम वर्क को रिजेक्ट मत करो, लाइक अनरेड व्हाट्सएप मैसेजेस। लकी कलर इज सॉफ्ट सेज, लकी नंबर इज 31। एंड अभी तक तुम्हारी राशि तुमने नहीं सुनी है, मतलब थोड़ी सी देर में आएगी, तब तक तुम ये मिर्चीदार बैंगर सुनो। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अभी मुझे फॉलो कर लो फटाफट से, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: इमोशनल डैमेज नहीं, इमोशनल सैटिस्फैक्शन लेकर आ चुकी हूँ मैं। बोलो तो प्रिसिला और मिर्ची मॉर्निंग्स। अब बारी है राशि जोन पार्ट टू की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, बिग आस्क करना है बॉस, क्लाइंट, लाइफ, पिच इट। आज कॉन्फिडेंस डिस्काउंट पर नहीं मिल रहा है, फुल प्राइस यूज करो। लकी कलर इज रॉयल प्लम, लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज किसी का मूड लिफ्ट करो। तुम्हारी ह्यूमर सेटिंग सरप्राइजिंगली एलीट है, कंट्रोल्ड केओस ओनली। लेकिन लकी कलर इज मिडनाइट टील, लकी नंबर इज 33। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, यूनिवर्स बोल रहा है स्टॉप पुशिंग, चिल करो थोड़ा सा। प्रोडक्टिविटी को अनपेड इंटर्नशिप मत बनाओ। लकी कलर इज डेजर्ट रोज, लकी नंबर इज 7। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, एंगल चेंज करो, जूम आउट। समटाइम्स द आंसर इज इन द स्प्रेडशीट ओनली, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिल जाता है। लकी कलर इज ग्रेफाइट ब्लू, लकी नंबर इज 42। दैट राइम्ड। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज डाउट को म्यूट करो, डिसीजन ले लिया है तो उसे कमिट करो। कॉन्स्टेंट री थिंकिंग बैटरी भी ड्रेन करती है और तुम्हें भी। लकी कलर इज आइस लैवेंडर, लकी नंबर इज 11। एंड पाइसिस यानी कि मीन राशि, हर फ्रेंड को रेस्क्यू करना जरूरी नहीं है, बस सपोर्ट करो, साथ रहो, साथ निभाओ। एडवाइस और वाईफाई दोनों तभी देना चाहिए जब कोई मांगे। लकी कलर इज ओशन पीच, लकी नंबर इज 26। एंड दैट्स इट दोस्त, राशि जोन यहाँ पर खत्म हुआ। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब जाने का टाइम शुरू हो चुका है मेरा। लेकिन जाते जाते एक थोड़ी सी सीरियस खबर बताती हूँ। इंटरनेट पे वायरल हुआ कुछ दिन पहले 370 रुपीज की बिरयानी मोमेंट, जहाँ पर एक 23-year-old लड़के ने कमेडियन प्रणीत मोरे के शो में रिमार्क्स किए, सजेस्टिंग एक्सपेंसिव डिनर का मतलब है इमोशनल या फिजिकल एंटाइटलमेंट ओवर योर डेट। रिपोर्ट्स के हिसाब से बाद में इंटरनेट पर काफी बवाल मचा है इस बात पर, इस स्टेटमेंट पर एंड अगेंस्ट दैट गाय। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हें उनकी गुरुग्राम बेस्ड कंपनी से रिमूव कर दिया गया है, उन्होंने अपोलॉजी दी है और इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट भी कर दिया है, और ऑफिस में उनका कॉन्डक्ट बिल्कुल भी खराब नहीं है, रिस्पेक्टफुल है एंड ही इज गुड विथ हिज वर्क। डिस्पाइट दैट उन्हें लेट गो कर दिया है कंपनी ने बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अब देखो यार, मैं कोई लाइफ कोच तो हूं नहीं, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि डिनर इज डिनर, काइंडनेस इज काइंडनेस, और रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो तुम सेट करते हो, ये कोई एक्स्ट्रा या फ्री में नहीं मिलता है। एंड ऑनेस्टली, अगर तुमने 370 रुपीज स्पेंड किए हैं और बिरयानी अच्छी थी, तो बिगेस्ट रिवॉर्ड शुड ऑलरेडी बी हैप्पीनेस। लेकिन एक सोशल कंडीशनिंग जो बन गई है अराउंड ह्यूमर, अराउंड डिसरिस्पेक्ट, respect around the dating culture and around stand-up comedy and standing up for what's right. इसकी शुरुआत किसी कॉमेडी शो से नहीं होगी, किसी इन्फ्लुएंसर से नहीं होगी, इसकी शुरुआत हम करेंगे। एंड ऑन दैट नोट, मैं एंड कर रही हूँ आज का शो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, डू फॉलो मी देयर, कनेक्ट विद मी देयर। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सो वियर्ड यार कि मुझे मेरी जो करंट नॉवल मैं अभी पढ़ रही हूँ उसका नाम याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे अचानक एकदम से याद आया कि मेरी पहली नॉवल का नाम क्या था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And well, आज actually ऐसे ही बैठे बैठे ना अचानक मैं जब कोशिश कर रही थी कि मेरी जो करंट नॉवल मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम क्या है, किसी ने पूछा था व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, तो मैं उसे याद करने की कोशिश कर रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे मेरी जिंदगी की पहली नॉवल का नाम याद आ रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक नॉवल मैंने खरीदी थी, इनफैक्ट मैंने नहीं, मेरी मम्मा ने खरीदी थी ताकि मुझे रीडिंग की आदत पड़े। एक छोटी सी नॉवल थी, मोटी सी नॉवल थी और मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी। उस नॉवल का नाम था The Black Beauty. It was the story about a horse and कैसे उस अस्तबल में घोड़े जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे उनकी जिंदगियां होती हैं, कैसे वो इंसानों से डील करते हैं, इंसान उनसे डील करते हैं। It was a story about that and it was just beautiful. But it is so weird कि मुझे वो चीज याद है लेकिन आज जो चल रहा है ना मेरी लाइफ में वो मुझे याद ही नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पुरानी बातें तो एकदम पुख्ता मैप की तरह आपके दिमाग में छपी हुई हैं, लेकिन आज क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है या अभी क्या हुआ था हमें याद ही नहीं रहता यार? अगर हाँ तो DM कर दो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और इसी के साथ आप मुझे ये भी बता दो कि आपकी जिंदगी की पहली नॉवल कौन सी थी। DM करो, और फिलहाल के लिए तो मैं मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बंधन एक ऐसी फिल्म थी जिसने ना सिर्फ हमें सलमान खान की एक मूवी दिखाई, एक स्टोरी दिखाई, एंटरटेन किया, बल्कि एक जिंदगी भर का डायलॉग भी दिया जो हमारे साथ चिपक कर रह गया। एंड दैट इज, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड रंभा, सलमान खान, जैकी श्रॉफ स्टारर बंधन, दिस फिल्म मैंने पता है केबल पे देखी थी, क्योंकि ये तो वो फिल्म थी नहीं जो हमारे घर वाले हमें थिएटर में देखने के लिए लेकर जाते, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हर एक फिल्म उस टाइम पे थिएटर में नहीं देखा करते थे यार। या तो डायनासोर्स की फिल्म या गॉडजिला की फिल्म, बच्चों से रेलिवेंट कोई भी फिल्म हुआ करती थी, हमें थिएटर में लेकर जाया करते थे। या अगर गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बड़ों को मूवी देखनी है तो वो हमें ले जाया करते थे। लेकिन बंधन गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आई थी, ये भी एक बात थी हमारे लिए। और मैं ना बड़ी तड़प रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि सलमान खान की एक नई फिल्म तो आई है बॉस, बस केबल वाले का इंतजार था कि अब ये कब ये फिल्म लगा देगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि अचानक केबल चैनल पर मुझे सलमान खान की झलक देखने को मिली और मुझे समझ में आ गया, सलमान खान की नई फिल्म केबल टीवी पर आ चुकी है बॉस। वेल, ये वो फिल्म थी जिसने सलमान खान को लवी डवी मूवीज के जोन से निकाल कर एक्शन में डाल दिया था, और यहाँ से सलमान खान ने एक नई तरीके की फिल्मों का दौर शुरू कर लिया अपने करियर में, एंड दैट इज एक्शन मूवीज। मगर इस फिल्म की शूट के दौरान एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ। इस फिल्म के अंदर आसिफ शेख, जो कि आपको भाभी जी घर पर है शो में भी नजर आए हैं, वेल, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है। सलमान खान के साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती जो है वो काफी पुख्ता हो गई थी। एंड देयर वाज दिस वन डे जब सलमान खान और आसिफ शेख जो है वो एक साथ सलमान खान की गाड़ी में राइड लेने के लिए चले गए। हुआ ये कि सलमान खान अचानक फुटपाथ पर गाड़ी चलाने लगे, एंड आसिफ शेख जो है उन्होंने सलमान खान को कहा कि भाई जरा ध्यान से, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो सलमान खान का रिप्लाई इस पर पता है क्या है? अरे फिकर मत करो यार, तुम सलमान खान के साथ ड्राइव कर रहे हो। अब जैसा आसिफ शेख ने सोचा था वैसा ही हुआ कि पुलिस वालों ने उन्हें इवेंचुअली पकड़ लिया, क्योंकि गाड़ी तो फुटपाथ पे चल रही थी ना यार। लेकिन जैसा सलमान खान ने बोला था वैसा नहीं हुआ कुछ भी प्रिडिक्शन के अनुसार, क्योंकि पुलिस वाले जो थे वो सलमान खान को पहचान ही नहीं पाए कि हु सलमान खान। जिस पर गाड़ी में बैठे सलमान खान एंड आसिफ शेख दोनों जोर जोर से हंसने लग गए कि यार जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे तो कॉमेडी और हो गई। मगर इस किस्से के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई यार, कि भाई की शायद हॉबी है फुटपाथ पर गाड़ी चलाना। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Avicii. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बंधन मूवी में जीजा जी का रोल बड़ा वजनदार था यार, जो कि जैकी श्रॉफ ने निभाया था, लेकिन दीदी के बिना कभी जीजा जी कुछ हो सकते हैं?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड बंधन मूवी में सलमान खान की सिस्टर, उनकी बड़ी बहन का रोल किसने निभाया था? वेल, शी वाज एन एक्टर जिनका नाम है अश्विनी भावे। एंड यू नो व्हाट, अश्विनी की उम्र सलमान खान से 6 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी शी गॉट कन्विंस्ड टू प्ले हिज एल्डर सिस्टर का रोल। इस फिल्म को 1994 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसकी रिलीज को 4 साल लग गए। और 1998 में जब ये फिल्म 4 साल बाद रिलीज हुई ना, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हिट हो जाएगी, क्योंकि यूजुअली जब इतने डिले के बाद कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो हिट नहीं हो पाती है, बिकॉज एक बहुत बड़ा टाइम लैग आ जाता है ना यार, कि 4 साल पहले सोचा हुआ आइडिया अब 4 साल बाद भी एप्लीकेबल है कि नहीं है। लेकिन सिंस पैसा लग चुका है, सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं और फिल्म जो है वो लॉन्च होने के बाद रिलीज होने को भी तैयार हो गई है, तो रिलीज कर देते हैं वाला मामला यहाँ पर भी था। कर दी फिल्म रिलीज एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड हिट। बट डिड यू नो कि सलमान खान ने जैकी श्रॉफ के साथ काम करने से 10 सालों तक मना किया था, क्योंकि उनको कहीं से उड़ती हुई ये खबर मिली थी किसी जमाने में कि यार 80s के दौर में जैकी श्रॉफ और सलमान खान की एक्स फियांसे संगीता बिजलानी, इनके बीच में कुछ तो स्पार्क था, जिसकी जानकारी उन्हें किसी अंदरूनी खबरी से मिली थी। बट फाइनली जब बंधन की बात आई तो सलमान खान ने अपने ग्रजेस को जाने दिया और इस फिल्म को रिलीज होने के लिए आने दिया। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बड़ी अजीब बात है यार, बचपन में जिस कार्टून कैरेक्टर को देख देख कर बड़े हुए उसको उस जमाने में तो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर ही समझा करते थे, और हाँ पसंद भी बहुत आया करता था, इम्प्रेसिव बहुत था। लेकिन आज उसी कार्टून कैरेक्टर को जब मैं सोचती हूँ ना तो लगता है कि हाय काश कि मैं यही कार्टून होती लाइफ में।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the cartoon character that I'm talking about is Richie Rich। याद है आपको? यार बचपन में जब इस कैरेक्टर को देखा करते थे ना तो इम्प्रेस तो मैं होती थी ये देखकर कि हाय क्या लाइफ है यार, क्या घर है, क्या गाड़ियां हैं, फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां होती थी बंदे के पास, क्या क्या गैजेट्स हुआ करते थे, क्या बंगला था उसका। लेकिन हमें तब भी ना सबसे अच्छी बात रिची रिच की लगती थी कि ये हमेशा सही का साथ देता है। एक अमीर लड़का होकर भी ना उसमें एक मासूम बच्चा छुपा है जो दोस्ती और इंसानियत में यकीन रखता है। आज मुझे उस रिची रिच के अंदर पता है क्या नजर आता है? सिर्फ और सिर्फ ये बात, यार क्या मस्त लाइफ है यार इसकी, क्या करना है इसको, अच्छा ही तो होना है ना सबके साथ। दैट्स सो सिंपल, मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना तो मैं भी इतनी अच्छी हो जाऊं सबके साथ। Which is not really easy जब आपके पास इतना पैसा आ जाता है तो, because लालच भी तो बुरी बला होती है और तभी ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा होता है। But nevertheless मेरे को तो यही लग रहा होता है कि यार काश काश की लाइफ में और कुछ ना करना होता और सिर्फ रिची रिच का रोल प्ले करना होता तो मैं तो तैयार थी फौरन से ये काम करने के लिए। आप बताओ, आपको रिची रिच इसी वजह से आज ज्यादा पसंद आता है या बचपन में ज्यादा पसंद आया करता था? DM करो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: लता जी और उदित जी की आवाज में दिस गाना इज सच अ गाना जिससे कि हम कभी नहीं उभर पाए यार. मतलब ये जो म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जी ने, इट वॉज समथिंग विच नो वन कुड एवर रिक्रिएट. रिक्रिएट तो चलो दूर की बात है, मगर इसके आसपास के बराबर का भी कुछ म्यूजिक मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा निकल के आया. आई तो आई एम जस्ट इन लव विद दिल तो पागल है का म्यूजिक और उसके गाने एंड ऑफ कोर्स द फिल्म एज वेल. इट्स अ पैकेज डील एंड आई कैन जस्ट नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, सो आई बेटर मूव ऑन.
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And before मैं again दिल तो पागल है के बारे में ब्लाबर करने लग जाऊं, अच्छा यही होगा कि मैं अगली बात छेड़ देती हूँ, विच इज मान न मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों की धुने मैं आपस में मिलाकर आपके लिए चला देती हूँ और आपको गैस करना होता है कि ये जो दो धुने आपने सुनी वो कौन से दो गानों की है. तो ये अभी गो आज की धुनों के साथ.

बस जी, अब मुझे डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: तबू और अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हकीकत। उसका एक ऐसा गाना था जिसे कि हमें बचपन में सारे बड़े टोका करते थे गाने के लिए कि नहीं नहीं ये गाना नहीं गाना है, ये अच्छी बात नहीं होती है जो इस गाने में कही गई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस गाने में क्या कहा गया था यार, बस यही तो कहा गया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है आज के टाइम पर, ये तो हमारे बड़ों का मुद्दा हुआ करता था। मुद्दा तो ये है कि ये जो कहा गया है, ये गाया गया है, जो म्यूजिक है ना, ये ओरिजिनल नहीं है बॉस, क्योंकि ये तो कॉपी की गई है फ्रॉम एन इंग्लिश बैंड जिसका नाम था द चैम्प्स, और उनका 1958 में रिलीज हुआ ये गाना टकीला इज एक्चुअली द ओरिजिनल म्यूजिक, जहां से इस गाने की इंस्पिरेशन या कॉपी, व्हाटएवर वी वांट टू से एंड व्हाटएवर वी फील अबाउट इट, की गई है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है ना कि 90s की कोई फिल्म है या कोई गाना है जो कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया, तो फॉरन डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार हम सब ने ये तो एक जमाने में पूछा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन हमने ये कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि यार गजनी मूवी के अंदर कल्पना संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी जाने बगैर ही मर गई। भाई ये हमारे लिए एज एन ऑडियंस तो बहुत ही दर्दनाक बात थी, और इस बात के पीछे जो वजह थी वो आज जाके पता लगी है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के डायरेक्टर AR मुर्गा दोस्त ने बताया कि यार इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते टाइम एक्चुअली जब उन्होंने ये अपने आप से सवाल किया कि व्हाट इफ अगर कल्पना को संजय सिंघानिया की असलियत पता लग जाती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इवेंचुअली ही अराइव टू द कंक्लूजन कि यार अगर उन्होंने इस स्क्रिप्ट के अंदर ये एडिशन कर दिया ना कि हाँ कल्पना को संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान के बारे में असीन को सब कुछ पता लग जाता है तो यार मजा चला जाएगा इस फिल्म के अंदर से। मजा तो वही था जहाँ कल्पना को ये बात नहीं पता थी कि संजय सिंघानिया आखिर हकीकत में है कौन, और कल्पना का वो जो जेस्चर था ना कि वो इतनी मासूमियत से संजय सिंघानिया जो इतना मिलियनर और मल्टी मिलियनर इंसान है उसको उसके पैसे भी लौटा रही है, इतनी सच्चाई से उसके साथ बिहेव कर रही है और बहुत ही बेसिक बातों को लेकर खुश हो रही है, वही वो सारी चीजें थी जो संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान का कैरेक्टर जो था उसको पसंद आई थी अबाउट कल्पना यानी कि असीम। और यही वो सारी बातें थी जो इस कैरेक्टर को लेटर ऑन याद रही आफ्टर ही फॉरगॉट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज नेम हिज फेम हिज मनी हिज हाउस ही फॉरगॉट एवरीथिंग बट जस्ट दैट गर्ल। और ये वही फील था वही इमोशन था जिसको वो टैप करना चाह रहे थे, लेकिन अगर कल्पना को संजय सिंघानिया के बारे में पता लग जाता तो ये इमोशन इतना अग्रेसिवली निकल के नहीं आता क्योंकि वही चीज बार बार आमिर खान के कैरेक्टर को हिट कर रही थी एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि उन्होंने इस चीज को वही छोड़ दिया। इनफैक्ट द रीजन कि आज आप और मैं इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ स्पीक्स अ लॉट अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने सही किया कि संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी कल्पना से हमेशा के लिए छुपाई ही रखी, वरना हम भी कहाँ इस बात के बारे में बात कर रहे होते। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर अंगूठी वाली जली,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोचते हैं कि खुद को डायमंड वाली अंगूठी दिलाएं, लेकिन इस दौर में भी तुम याद आई जाती हो यार। तुम्हें याद करके ना बचपन की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। वो छोटी रंग बिरंगी नर्म नर्म और मीठी जली, जिसे उंगलियों में पहनकर राजा महाराजा जैसा महसूस करते थे यार। मैं अक्सर ना तुम्हें ट्यूशन पहनकर चली जाती थी, होमवर्क करते करते चुप चुप के तुम्हारे चटकारे लिए जाते थे, और तुम्हारी बेस्ट बात भी यही थी कि तुम्हें खाते खाते हाथ गंदे और चिपचिप नहीं होते थे। टॉफी और चॉकलेट के बीच तुमने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। जेब में चिल्लर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खरीदने की जिद कभी कम नहीं हुई। दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हें उंगलियों में पहनना और फिर धीरे धीरे तुम्हें चाट चाट कर खाना, क्या मजा आता था यार। आज के फैंसी चॉकलेट्स और स्नैक्स के बीच में तुम कहीं खो तो गई हो, लेकिन तुम्हारी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश फिर से वो बचपन लौट आए और हम तुम्हें वैसे ही उंगलियों में पहनकर खिलखिलाते हुए तुम्हारे चटकारे ले सके। तो सच बता रही हूँ, आज ये जो हम सोने चांदी की अंगूठियां पहनते हैं ना, उन्हें भी एक पल साइड में रखने के लिए तैयार हो जाऊंगी मैं। थैंक यू हमारे बचपन को इतना मीठा और इतना रंगीला बनाने के लिए। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। सारा जमाना है सारा का दीवाना। मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कुमार सानू एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म डुप्लीकेट से ये गाना इस कैसेट के साइड ए का दूसरा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: गाना कौन सा है? वेल, आपको गेस नहीं करने देती हूँ, खुद ही बता देती हूँ। लल्लाई लल्लाई लल्लाई लल्लाई लल्लाई लल्लाई। जब ये लाइन्स आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे, इसकी म्यूजिक ही इतनी कंप्लीट है कि आगे हमें लिरिक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब लिरिक्स सुनते हैं तो और ज्यादा मजा आता है। कॉम्पोजिशन बाय अनु मलिक एंड लिरिक्स गेस किसके? जावेद अख्तर साहब के। तभी तो इतने इंटरेस्टिंग लिरिक्स हैं। जब ये लिरिक्स आते हैं ना, और जहाँ पर ये बात कही जाती है कि एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत होने को है, तो ये जो सारे के सारे आसार हैं, ये एक्चुअली मोहब्बत के ही होते हैं। जब शरारत होने वाली होती है और कयामत भी होने वाली होती है और होश भी खोने वाले होते हैं, ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, तभी तो इंसान किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन ना, मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी, जब एक इंसान दूसरे इंसान को, यानी कि कोई इंसान अपने पार्टनर को ये कह रहा होता है कि चलते हैं गाते गाते, सोचा ना जाते जाते कि जाएंगे दोनों हम कहाँ, आंखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, सब इश्क के हैं ये निशान। वाकई में जब मोहब्बत होती है ना, तो ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि यार कल क्या होगा, ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये कल किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये सवाल किसी को नहीं सूझता है। सब सिर्फ और सिर्फ आज में जी रहे होते हैं, जो कि बड़ी ही रेयर चीज है, और आज के टाइम पर हम सबसे ज्यादा यही ढूंढ रहे होते हैं, आज में जीने के तरीके। एंड लव इज दैट वन थिंग विच एक्चुअली मेक्स यू लर्न हाउ टू लिव इन टुडे। तो इंसान जो है वो हंसता गाता गुनगुनाता रिश्ते निभाता हुआ, बिना सोचे हुए कि यार ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, आज में जी रहा होता है। और ये बात भी कितनी प्यारी कही है कि आंखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, कि डायरेक्शन हमने एक दूसरे से कभी नहीं पूछा ना डिसाइड किया, लेकिन हाँ, वो ख्वाब कि एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है और एक कल भी होना चाहिए हमारा, वो भी आंखों के अंदर कहीं बसा हुआ होता है। एंड वेल, इस खूबसूरत लिरिक्स के साथ इस ब्यूटीफुल ट्रैक को प्ले करती हुई मैं यहाँ से चली और आपसे कहती हुई जाती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

ये तो हम सब जानते हैं कि शोले फिल्म कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म के ट्रेसेस सिमिलैरिटीज आपको बहुत सारी वेस्टर्न फिल्म्स और इंडियन सिनेमा की फिल्म्स में भी दिखेंगी, जिनमें से एक फिल्म है ये जिसका गाना हमने सुना था अभी, मेरा गांव मेरा देश, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मास्टर डायरेक्टर राज खोसला ने, जिन्हें इंडियन सिनेमा में नॉयर फिल्म्स या डार्क फिल्म्स का पायनियर भी कहा जाता है। नॉयर या डार्क फिल्म्स जिनमें होता है सस्पेंस, मिस्ट्री, मर्डर, किडनैप, धोखा, लूट, मार, वायलेंस, सेक्सुअलिटी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी ऐसी डार्क डार्क सी रहती है, जैसे पूरी फिल्म में अंधेरा हो, लाइट गई हुई है। वैसे तो बहुत सी डायरेक्टर्स ने डार्क फिल्में बनाई हैं, बट राज खोसला साहब वॉज अ मास्टर इन दिस क्राफ्ट। उनके डायरेक्शन की जर्नी की शुरुआत तो हुई थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू गुरुदत्त साहब, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, it's hot. पुरानी जीन्स विद चारू, only on मिर्ची.

बातें हो रही हैं 50s, 60s, 70s के वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला साहब की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई इनका जन्म 1925 में पंजाब में हुआ था। अच्छा फिर कुछ सालों बाद इनकी फैमिली पंजाब से बॉम्बे आ गई। पढ़ाई के साथ साथ इनको म्यूजिक का बहुत शौक था। इन्होंने म्यूजिक में सिंगिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली। इनफैक्ट जब ये बड़े हुए तो केएल सहगल साहब के साथ, केएल सहगल साहब इनके घर के पास ही रहते थे, उनके यहाँ पे जाते थे, उनके साथ रियाज भी करते थे। इट वॉज एक्टर सिंगर केएल सहगल साहब जिन्होंने इनको सजेस्ट किया कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम भी जरा रेडियो पे या फिल्मों में गाने का ट्राई करो। और ये निकल गए ट्राई करने। इनको क्या पता था कि ये जो निकले हैं तो पहुंचेंगे गुरुदत्त साहब के पास और उसके बाद बन जाएंगे इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्टर्स। इस जर्नी की भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans. With Charu, only on Mirchi 101.3.

मेरा साया फिल्म से ये गाना। आज पुरानी जींस पर हम जो गाने सुन रहे हैं ना, वो ज्यादातर राज खोसला साहब की फिल्मों से हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज खोसला साहब इंडियन सिनेमा के बड़े डायरेक्टर्स में से एक। इनकी सिर्फ फिल्में तोप नहीं होती थी, इन फिल्मों का म्यूजिक भी डोप होता था, बिकॉज राज खोसला साहब वॉज अ ट्रेंड म्यूजिशियन। इनफैक्ट ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। अपने नेबर एक्टर सिंगर KL सहगल के सजेशन पे ये भी फिल्मों में गाना गाने आजमाने के लिए चले गए। कुछ एक दो फिल्मों में इन्होंने गाना गाया भी और फिर ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक स्टाफ में शामिल हो गए। ये मैं लेट 40s की बात कर रही हूँ, जहाँ पे इन्होंने एक फिल्म में छोटा सा रोल भी किया था, एक हीरोइन के लिए बॉडी डबल का रोल, मतलब उस हीरोइन के लिए घुड़सवारी का एक सीन शूट करना था तो इन्होंने उसकी जगह पे शूट किया विग वगैरह लगा के। बट ही रियली वॉन्टेड टू बी अ प्लेबैक सिंगर, लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे उनकी लाइफ में देवानंद जैसा दोस्त और गुरुदत्त जैसा मेंटर आने वाला है, कि आने वाले कुछ सालों में वो एक सुपरहिट फिल्म, एक क्राइम थ्रिलर CID डायरेक्ट करने वाले हैं। इस बारे में करेंगे बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स बनाने वाले डायरेक्टर्स में से एक बड़ा नाम है राज खोसला साहब का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है खोसला साहब को म्यूजिक से इतना प्यार था, इतने पैशनेट थे वो ट्रेंड सिंगर भी थे, वो फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। और इसी के लिए जब वो लेट 40s में स्ट्रगल कर रहे थे तब वो मिले देवानंद साहब से। देवानंद साहब ने पहचान लिया कि इस लड़के में कोई बात है, इसको चांस देना चाहिए। उसी दौरान देवानंद साहब की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च हो रही थी, जिसकी पहली फिल्म बाजी डायरेक्ट कर रहे थे देवानंद के दोस्त गुरुदत्त साहब। और तब देवानंद ने राज खोसला साहब को सजेस्ट किया कि भाई तुम मेरे इस फ्रेंड को जो मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है उसको असिस्ट क्यों नहीं करते, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है। खोसला साहब ने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते। और जब वो गुरुदत्त साहब से मिलने पहुंचे, उस मुलाकात में क्या हुआ करते हैं इस बारे में बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Point 3 Mirchi. It's hot.

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: ना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: मन में रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हारी चलूं जाना,
0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जला।
2: डायरेक्टर राज खोसला जब फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लेट 40s में, तब उनकी लाइफ में फरिश्ते दोस्त बनकर आए देवानंद। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देवानंद साहब ने इनको कहा कि भाई मेरी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स के अंडर एक फिल्म बन रही है जिसे मेरा दोस्त गुरुदत्त डायरेक्ट कर रहा है, उसकी भी ये पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तुम उससे जाके मिलो, हो सकता है तुमको गाने का मौका भी मिल जाए। भाई ये 1951 की बाजी फिल्म थी। और खोसला साहब जब गुरुदत्त से मिलने गए तो गुरुदत्त साहब ने उनसे पहला सवाल पूछा, क्या तुमने कभी पहले किसी फिल्म में असिस्ट किया है? इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया हाँ। फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमको हिंदी आती है? इन्होंने फिर सफेद झूठ बोल दिया हाँ। भाई खोसला साहब और उनका परिवार काफी टाइम तक पंजाब में रहा था, जहाँ पे उस टाइम उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो उनको उर्दू आती थी लेकिन हिंदी नहीं आती थी। पर ये झूठ जो इन्होंने बोले तो गुरुदत्त साहब ने कहा कि ठीक है कल से आ जाओ मुझे असिस्ट करने। इस मीटिंग से बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज जो खोसला साहब ने की वो हिंदी सिखाने वाली किताब खरीदी और गुरुदत्त साहब को उनकी फिल्मों में अर्ली 50s में असिस्ट करना शुरू कर दिया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi. It's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सीआईडी फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त साहब ने और डायरेक्ट किया था उनके मेंटी, उनके शागिर्द डायरेक्टर राज खोसला ने। लेट 50s में ना गुरुदत्त साहब एक फिल्म बनाना चाह रहे थे वहीदा रहमान और सुनील दत्त के साथ। फिल्म का नाम था राज। फिल्म अनाउंस भी हो गई थी लेकिन कुछ ही दिनों बाद बंद कर दी गई। फिर अर्ली 60s में वापस ये फिल्म बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बनी। लेकिन गुरुदत्त साहब के शागिर्द उनके मेंटी राज खोसला साहब ये स्क्रिप्ट भूल नहीं पाए, जो कि एक नॉवल द वुमन इन वाइट पर बेस्ड थी। राज खोसला साहब ने वही स्क्रिप्ट यूज करके 1964 में

एक ब्रिलियंट फिल्म बनाई। फिल्म का नाम वो कौन थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

पुरानी जींस पर आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर राज खोसला साहब की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो डायरेक्टर जिन्होंने इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स को एक नई डेफिनेशन दी। ये सस्पेंस थ्रिलर जिसका हमने अभी गाना सुना, मेरा साया फिल्म, ये भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। अच्छा, क्योंकि खोसला साहब खुद म्यूजिक में ट्रेंड थे, उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी उनकी USP होता था। तो एक फिल्म के म्यूजिक में ना एक म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने एक ट्यून इनको सुनाई लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी। एक बार नहीं बल्कि 5 बार रिजेक्ट कर दी, लेकिन म्यूजिक कंपोजर इस ट्यून को लेकर बहुत श्योर थे। उन्होंने फिल्म के हीरो से बात की कि भाई आप जरा डायरेक्टर साहब को समझाइए, ये बहुत अच्छा गाना बनने वाला है। इस बार खोसला साहब ने फिल्म के हीरो के साथ बैठकर ये धुन वापस से सुनी और ऐसा सुनने में आता है कि धुन सुनते सुनते वो अचानक कमरे से बाहर चले गए, दूसरे कमरे से एक चप्पल उठा के लाए और खुद को चप्पल से मारने लग गए कि ये धुन मुझे कैसे नहीं पसंद आई। वो म्यूजिक कंपोजर थे मदन मोहन, वो फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, वो फिल्म थी 1964 की वो कौन थी और वो गाना था लता मंगेशकर की आवाज में दिस आइकॉनिक सॉन्ग। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani jeans. Purani jeans. With Jaru. Only on

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CID, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची, it's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

अब बहनों भाइयों, अब मेरा साया फिल्म का ये गीत उस साल गीतमाला में चौथे पायदान पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सिर्फ यही गाना नहीं, डायरेक्टर राज खोसला की फिल्मों के कई गाने इस चार्ट में, इस काउंटडाउन में टॉप पे थे। राज खोसला साहब उन डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्हें हम म्यूजिकल डायरेक्टर बोल सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टर जिनकी फिल्में तो टॉप होती थी, म्यूजिक भी एकदम डोप होता था। और इनके केस में तो ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि खुद ये एक ट्रेंड सिंगर थे। एज डायरेक्टर अपने 35 साल के करियर में उन्होंने कुछ 25 फिल्में डायरेक्ट की होंगी और ऑलमोस्ट सभी का म्यूजिक क्या म्यूजिक रहा है। क्या कवाली, क्या गजल, क्या सूफी कविताएं, क्या रोमांस और क्या फोक सॉन्ग्स, सभी को जगह मिली है राज खोसला साहब की फिल्मों में। खासकर के फोक सॉन्ग्स की बात करें तो उनकी हर फिल्म में ऐसा कोई सॉन्ग होता था जिसमें फोक का फ्लेवर होता था, जैसे कि ये हमने सुना था मेरा साया का आइकॉनिक सॉन्ग झुमका गिरा रे, एंड द नेक्स्ट वन दो रास्ते फिल्म का गाना, जो भाइयों बहनों उस साल गीतमाला में पायदान नंबर एक पर था। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची पर।
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

याद कर रहे हैं आज हम राज खोसला साहब को। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द ब्रिलियंट आइकॉनिक डायरेक्टर जो अपनी नॉर डार्क फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन फिल्मों के म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं और एक और चीज के लिए जाने जाते हैं कि उनकी फिल्म की कहानियां अक्सर वुमेन सेंट्रिक होती थी। वहीदा रहमान जी का डेब्यू उनकी डायरेक्टेड फिल्म CID से हुआ। हालांकि वहीदा रहमान जैसे उनकी काफी खिटपिट रहती थी, तो भी जिस तरह से उस फिल्म में उनको प्रेजेंट किया गया एज अ वैम्प और फिर बाद में 16 साल मूवी में जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया, दैट वॉज ब्रिलियंट। आगे जाके वो कौन थी, मेरा साया और अनीता ऐसी फिल्मों से उनका साधना के साथ एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन हुआ। इन तीन मिस्ट्री फिल्मों ने साधना को मिस्ट्री गर्ल का टाइटल दे दिया। दो बदन जैसी मूवी ने आशा पारेख की जो चंचल चुलबुली हीरोइन वाली इमेज थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पे एस्टैब्लिश किया। फिर दो रास्ते फिल्म में मुमताज का पोर्ट्रेयल एंड नॉट टू फॉरगेट मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसमें नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और इनकी फिल्मों के जो गाने होते थे उसमें जिस तरह से एक वुमन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था, दैट यूज्ड टू बी सो वाओ। मुझे इनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश का एक गाना बहुत पसंद है जो मैं आपको सुनाती हूँ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची 101.3।

क्या ही गाना है और क्या ही डांस किया है वहीदा रहमान जी ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये CID फिल्म का गाना है जो वहीदा रहमान जी की पहली हिंदी फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड बाय गुरुदत्त एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला। इस गाने का वीडियो अगर आप देखेंगे ना, इसमें वहीदा रहमान जी ने सूट के ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जो कि डायरेक्टर के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें वहीदा रहमान जी एक वैम्प के रोल में है और इस गाने में पर्टिकुलरली वो एक विलन को, एक बंदे को ल्योर कर रही है, रिझा रही है। तो डायरेक्टर ने कहा कि दुपट्टा नहीं ओढ़ना है और वहीदा जी अड़ गई कि मुझे तो ओढ़ना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहीं से इन दोनों की, डायरेक्टर राज खोसला और वहीदा रहमान जी की, थोड़ी खिटपिट शुरू हो गई, जो कंटिन्यू रही इनकी अगली फिल्म 16 साल में भी, जहाँ पे एक सीन था जहाँ हीरोइन पानी में कूद जाती है, हीरो उसको बचाता है, फिर दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ दोनों कपड़े चेंज करते हैं। इस सीन में वहीदा रहमान जी का थोड़ा सा ऐसा शोल्डर दिखाया जाना था, उनकी स्किन दिखाई जानी थी, इसके लिए भी उन्होंने साफ मना कर दिया। इस बात पे उनकी और डायरेक्टर राज खोसला की इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ने कसम खाली की एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। ये कसम टूटी 26 साल के बाद, जब 1984 में सनी मूवी में दोनों ने साथ में काम किया। खैर, टॉकिंग अबाउट 16 साल, उसका ये गाना क्या गाना है, आइकॉनिक है, कल्ट है, क्लासिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

आज पुरानी जीन्स पर हम जो गाने सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर डायरेक्टर राज खोसला साहब की फिल्मों से थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज खोसला साहब अपने दोस्त देवानंद के सुझाव पर अपना डायरेक्शन का करियर उन्होंने 1951 में गुरुदत्त साहब को असिस्ट करते हुए एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया। अपनी पहली फिल्म उन्होंने 1955 में डायरेक्ट की जिसका नाम था मिलाप। वो इतनी नहीं चली लेकिन उससे अगले साल 1956 में CID फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद इस जॉनर में, डार्क फिल्मों के जॉनर में, राज खोसला साहब ने कमाल कर दिया। उनकी लास्ट डायरेक्टेड फिल्म 1989 की नकाब फिल्म थी। उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने राज खोसला नाम से एक स्टैम्प भी इशू किया था। राज खोसला साहब ने जिस तरह से इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स को डिफाइन किया, आगे चलकर बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स ने उनसे इंस्पिरेशन ली। डायरेक्टर्स लाइक महेश भट्ट एंड खुद राज खोसला साहब के बेटे मिलन लुथरिया। इन डायरेक्टर्स की फिल्में देख लें आप, राज खोसला साहब की बहुत सी छाप देखने को मिलेगी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अब आपसे होगी मुलाकात कल यहीं मिर्ची पर। जाने